0: थोड़े चा ते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
2: Aao lagge hani dollar da mull mohdda, khada e garage vich pikka phodda, chakta kade to kola.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: मैनू सब तो ज्यादा डर लगता दोस्त ना रुसा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तेरे हुसन दे चर्चे

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र तो फूको बच्चे थे।
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने ही बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट NRIMB.com।
5: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार, तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार। 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
6: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
7: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi.
2: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड कनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 इवनस रोड जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
3: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
2: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस समग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने,
4: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ,
5: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
6: कैनेडा दी मन्नी परमानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शॉ ट्रांसपोर्ट नू चाहिए ने कुछ एक ड्राइवर्स, इमीडिएट हायरिंग हो रही है, ओनर ऑपरेटर्स टीम, कंपनी ड्राइवर्स टीम, सोलो ड्राइवर्स चाहिए ने जी कंपनी दे वास्ते, कंसिस्टेंट लराडो टेक्सास दे रन्स, स्टेडी माइल्स अते रिलायबल काम पूरा साल दिता जावेगा, वधेरे जानकारी लई कॉल संदीप 416-903-8390। शॉ ट्रांसपोर्ट दा यार्ड लोकेटेड है एट 5758 डिक्सी रोड इंटरसेक्शन 401 and Dixie. Number 416-903-8390.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: दादे दा हौसला ते दादी दियां दुआवां ने सब दे पैर छू सका दुनिया ते जिन्निया भी मामा ने। मेरे लिए दुनिया गोरी आ भावे मैं आप पक्के रंग दा हां, मैं भैणा लई इज्जत ते मामा लई दुआवां मंगदा ते मामा लई खैर मंगदा।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

तू मेरी सारिया गल्लां ते तौहीन कीता सी, तू मेरी एक ना मनी, मैं बोलदा रह गया, मैं तेरी हर गल ते यार अमीन कीता सी, अमीन कीता सी।

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

0: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होंठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance, we also ship cars, tailor transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist.
1: HK Movers.
4: HK Movers.
5: शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार, आ गया फेर तो एक बार, तुहाड़ा अपना, CJMR 1320. CJMR 1320.
6: कर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
7: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
6: और विजिट www.calidonpaving.com।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: कैलेडन सब्जी फार्म, जिथो तुसी खरीद सकते हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चा, घिया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा। सरों दा साग, गंदला वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी, जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकते हो। इस तो अलावा स्टील, सरवलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे बर्तन, फोल्डिंग बैड, नवारी पलंग, मूड़े, साइकिल, तंदूर आदि खरीदन वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन, एयरपोर्ट एंड मेफील्ड, और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।

0: மிட்டாயா ஸ்நாக்ஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட் பர்ஃபெக்ட் டைனிங் வியாதி பஜ்ஜி லைவ் கேட்டரிங்லி சார் ஃபுட் ட்ரக்ஸ் வினே கேட்டரிங் ஃபார் ஆல் பார்ட்டிஸ் குவாலிட்டி நம்பர் ஒன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னர் சப் மிலேகா டொரண்டோ ஃபுடிஸ் தி பர்ஃபெக்ட் லொகேஷன் யானி ஸ்வீட் மெஹல் 680 ரெக்ஸ்டேல் புலிவர்ட் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் கால் சுக்கா காங் 416-679-9191
1: ஸ்வீட் மெஹல்
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप च्वाइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री ली वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण ली चेती रखो टॉप च्वाइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 905-799-0045 9057990045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स
0: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो आज ही कॉल करो 416-716-7094
2: जीवना जा मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दी रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 लोटस फ्यूनरल होम।

0: तन ते पाया कपड़ा जो भी पार पार के लाउना वे मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो, शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi.
2: अगर थोड़ी बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहते हो तो एको एक नाम नु याद रखना पिछले 25 साल तो कम्युनिटी दे विच मन्या पर मन्या नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह 416-451-4565 25 साल दी दिन देने नाल वारंटी 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा ली पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा
3: डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स येकर तो हड़ा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो कसूर तो हड़ा है या नहीं तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए चीचियां ना वटो बस एक नाम याद रखो किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने की सूरत विच तुहाडे हक कांदा रखवाला मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स फ्री सलाह मशवरे लई आज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1-800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010 डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल